नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान

0: और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HIST और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
3: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व

0: की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
1: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तट रक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने 6ठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर

0: की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत US संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमेरिका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब US और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at party headquarters in Delhi. Party passes

0: ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ. ಈಗ ಸಮಯ 11 ಗಂಟೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 111 ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.
1: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಔರ್ ಆಪ್ ಸುನ್ ರಹೇ ಹೈ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ.
2: ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 111.
3: नमस्कार. पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं. साथियों, मन की में आज हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं दो भेंट वार्ताएं जो ऐसे विषयों पर आधारित हैं जो हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. अमृत सरोवर और कैच द रेन. लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं इन विषयों के बारे में मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्गार.
4: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी. मैंने आग्रह किया था सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं. कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है. जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए. इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है. मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की. पुराने तालाबों से घास निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं. साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1,500 तालाब बनाए गए हैं. नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है. महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है. आंध्र प्रदेश के नंदियाल में अभियान से जुड़ी है और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है. हमारे शहर भी पीछे नहीं है. छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं. आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी

0: पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की।
1: रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ये दोहे की केवल एक पंक्ति नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य तय करने वाला सच है। पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, फसलों में जान डालता है और जीवन का आधार बनता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर यही पानी, यही जल धीरे धीरे हमारी जमीन से गायब होने लगे तो सब तबाह होना शुरू हो जाएगा। इसी जल संकट को दूर करने और हमारी आने वाली पीढ़ियों करने के लिए शुरू हुआ एक अनूठा अभियान, मिशन अमृत सरोवर। अमृत सरोवर केवल पानी का तालाब या पोखर नहीं है, बल्कि ये हमारी ग्रामीण संस्कृति, सामुदायिक एकता और जल संरक्षण की एक नई क्रांति है। देश के हर जिले में 75 ऐसे तालाबों का पुनरुद्धार और निर्माण किया जा रहा है, जो भूजल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ हमारे गांवों को एक नया जीवन दे रहे हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई है।
2: श्रोताओं, बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत परमार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण, कैच द रेन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के महत्व को बताते हुए उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संवर्धन और पुनर्जीवन की सराहना की। प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय मंच से जिले के कार्यों का उल्लेख किया जाना निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले के लिए गौरव और सम्मान का विषय है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे विशेषज्ञ अतिथियों को आज आमंत्रित किया है। श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर श्री गजेंद्र सिंह नागेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद
2: रजनी मैम। अमृत सरोवर का जब जिक्र होता है तो एक छवि हमारे मानस पटल पर बनती है, साफ स्वच्छ पानी से लबालब भरे हुए तालाबों की, सरोवरों की। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख कर रहे हों, तो हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि अमृत सरोवरों के संवर्धन, जल संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन के लिए आपने किस प्रकार कार्य किया, किस प्रकार इसकी योजना तैयार की गई और कैसे इस पूरे अभियान को अंजाम दिया गया।
4: पिछले कई वर्षों से लगातार भारत सरकार के द्वारा और मंत्री शासन द्वारा जल संरक्षण को लेकर कई उसी तारतम्य में JSJB जल संचय जन भागीदारी अभियान और मध्य शासन का जल गंगा संवर्धन अभियान, ये प्रारंभ किए गए हैं। इन्हीं दोनों अभियानों के अनुक्रम में जिले में अमृत सरोवरों का ये काम प्रारंभ हुआ था और पिछले दो वर्षों में लगभग 63 अमृत सरोवर जिले में निर्माण किए गए। इन जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं उनमें, क्योंकि समय के साथ आप देखते हैं कई बार गाद भर जाती है या थोड़ा जल स्तर कम हो जाता है, तो इनका संरक्षण किया जाना, लगातार इनमें जल भराव इसका मेंटेन रहे, ये सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इस वर्ष हम लोगों ने जब जल संचय जन भागीदारी का काम और कैच द रेन कैंपेन जो भारत सरकार ने शुरू किया उसके अंतर्गत जो हमने कुछ काम लिए, उसमें अमृत सरोवरों को मुख्य रूप से लिया गया, क्योंकि अमृत सरोवर के जो साइज होते हैं वो उस क्षेत्र में एक बड़ा जल भराव का सेंटर होता है और उस क्षेत्र में जल का, हम कहें, संग्रहण का एक अच्छा माध्यम बनता है। वो हम लोगों ने प्लानिंग की कि पहले हमने चिन्हित किए कि कितने हमारे पास अमृत सरोवर बने हुए हैं और हमारे जो कुछ अपूर्ण थे उनको पूर्ण करना, हम उनको पूर्ण कर पाएं, और जो निर्मित हो गए हैं उनमें गांध निकासी करके उनकी जल भराव क्षमता को मेंटेन करें। तो हम लोग लगभग जनवरी फरवरी में इसकी कार्ययोजना बनाई और इसके साथ ही, जैसे मैंने कहा कि जल संचय जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हमने जो हमारे खेत तालाब, जो भी एक तरह के सरोवर होते हैं जो छोटी साइज के रहते हैं, तो खेत तालाब लगभग हमने 1100 खेत तालाबों की योजना बनाई जिन्हें हमें पूर्ण करना था। और इन दोनों ही, जो हम अगर तालाबों की बात करें, तो दोनों ही कार्यों में लगातार प्रयास करके हम लोगों ने जून तक सभी, एक तो कार्य पूर्ण थे और जिसकी क्षमता कम हो गई थी उनको, उनकी जल भराव क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य ध्येय वाक्य होता है कि कैच द रेन वेयर इट इज, जो है उसको लेके हमने प्रयास किया कि हम उसको चरितार्थ कर पाएं और अधिक से अधिक वर्षा जल को संचय कर पाएं अपने जिले में।
2: जी गजेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे अभियान में, इस पूरे जल संरक्षण और अमृत सरोवर के अभियान में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी बाधा क्या रही मैदानी स्तर पर नरसिंहपुर जिले में कार्य करते हुए, जब आपने जल संरक्षण का कार्य और अमृत सरोवरों का संवर्धन का कार्य शुरू किया, सर आपसे जानना चाहेंगे।
5: देखिए, जहाँ तक जल संरक्षण के कार्यों में समाज के रुख का प्रश्न है, थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं धारणा है कि कोई काम अगर सरकार नीत है तो वो काम सरकार के नुमाइंदे

0: दही करेंगे, एक ऐसी धारणा है। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट जो हम समझते हैं कि जल के विषय में तो अनिवार्य आवश्यकता है, हम बिना समाज के, बिना स्थानीय संसाधनों के, मानव प्रबंधन के, महिलाओं के, युवा साथियों के नहीं किया जा सकता। तो जब हमने इन जल इकाइयों के निर्माण या कि उनकी पूर्णता का विषय रखा, तो सहज रूप से जो एक पहला रहता है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कि वो परखते हैं, थोड़ा देखते हैं कि आप किस स्तर की बात कर रहे हैं, वो उसमें औपचारिकता है या वास्तविक रूप से आप उसमें अपना इनपुट दे रहे हैं। तो लोग धीरे धीरे शामिल हुए और पहले उनकी जो जिज्ञासा थी वो कुछ प्रश्नों के रूप में थी, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं समागम के रूप में और साहचर्य के रूप में आती चली गई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि गोटेगांव जनपद में मेक में एक तालाब था, लगभग 1959 में वो वहां के कुछ परिवारों ने दान दिया था जल संरक्षण इकाई के लिए। बाद में वो फिर अतिक्रमण होकर और उसमें खेतियां होती रही, लेकिन इसी अभियान में जब उसको लिया गया और गांव ने ही सहयोग करके उस पूरे 21 एकड़ को एक जल इकाई के रूप में, सरोवर के रूप में विकसित किया। और ये जल संरक्षण के जो कार्य हैं, न केवल ये केवल भौतिक उपागम है या कि जल ही रोक रहे हैं, लेकिन समाज को भी कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात है।
1: एक प्रशासक के तौर पर क्या चुनौतियां रही आपके लिए?
0: एक तो नरसिंहपुर के लिए अगर हम बात करें, नर्मदा जी का कछारी क्षेत्र है, परंपरागत रूप से इसमें जल का स्तर रहा है, भूमिगत जल का स्तर काफी अच्छा रहा, लेकिन इधर धान, गेहूं और आपके गन्ने की फसल जो कि थोड़ा सा ज्यादा पानी की खपत करते हैं, उनके लगातार उपयोग से और बोरिंग की अधिकता के कारण जिले में जल का स्तर बहुत तेजी से डिप्लीट किया है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ खेती में कई कई दफे एक एक किसान के पास 6-6, 8-8 बोर हैं, वो असफल हुए, और लगभग 3-4 क्रॉप का जिला है। तो वो जब रबी से लेके जब सिंचाई गर्मी के पूरे सीजन होती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भूगर्भीय जल का स्तर कैसे गिरेगा। तो लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि उनकी उपजाऊ भूमि में ही हम जल इकाइयां का निर्माण करें और उसके अपने हिस्से की जमीनों को वो कुछ मामला में जल संरक्षण के लिए छोड़ें, ये समझाना एक महत्वपूर्ण बात है। फिर मतलब ऐसे भी उदाहरण देखे गए कि फॉर्म पॉन्ड बने हुए हैं और उसमें वो पानी न रोकते हुए उसमें वो दूसरी खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनके कुछ धारणाओं को थोड़ा सा परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। फिर स्थानीय समुदाय को जोड़ना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। पंचायत के हमारे जो इकाई हैं, सरपंच सचिव हैं, जो कि निश्चित रूप से उनका भी मानस वही होता है जो गांव का होता है लगभग, तो उससे फिर अपना अभिष्ट निकालना, उससे वो सहयोग प्राप्त कर लेना, स्वीकृत कार्यों को पूरा कराना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे कि मानी मैडम ने कहा कि 1500 से अधिक हमारे ऐसे काम जो मनरेगा के रहे हैं, उनको भी इसी अवधि में हमने पूरा कराया है और लोगों का सहयोग लिया है। और फिर बाद में तो बात ये हुई कि लोगों ने खुद आगे बढ़कर सहयोग दिया, विभिन्न इकाइयों ने, और वो हमारे चाहे इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उन्होंने भी मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाया,
1: यानी कि एक समन्वित प्रयास, तब ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। अमृत सरोवर और जल संरक्षण पर बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन पहले हमारे अतिथियों की पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। रजनी मैम, कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: सावन का महीना है तो हमें लगता है लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, बहुत गाना रहेगा, अच्छा मुझे पसंद भी है।
1: जी बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज की हमारी बातचीत का विषय है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में अमृत सरोवरों का पुनरुद्धार और जल संरक्षण, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में किया था। बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रजनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा अभियान अमृत सरोवर और जल संरक्षण का आपने सफलतापूर्वक किया, इस विभागों का, समुदायों का किस प्रकार योगदान रहा है, कैसे ये समन्वय बनाया आपने?
1: नरसिंहपुर जिले में जेएसजेबी 2.0 और जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा कि आपको जानकारी है कि कृषि प्रधान जिला है और बहुत उपजाऊ जमीन है, ऐसा कहा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में तो कि एशिया की सबसे उपजाऊ जमीन नरसिंहपुर जिले में है और बहुत लोग इसमें उसका उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ मल्टीपल टाइप के क्रॉप्स होते हैं, तो शासकीय जो भूमियां भी हैं जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनमें भी स्थानीय स्तर पर लोग संज्ञान में आए कि लोग कृषि कर रहे हैं, तो उससे जो और कृषि को लेकर इतना उत्साह है लोगों में, इतना लगाव है कि वो जरा सी भी भूमि, मतलब ऐसा है कि उसको खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो और जैसा कि अभी सीओ साहब ने आपको बताया कि नर्मदा नदी हम एक उनका क्षेत्र है और सारे घाटों पे आसपास ये खेती, लगातार खेती के कारण जो हमारा इरोजन, सॉइल इरोजन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये सब समस्याएं हमारे सामने थी। तो हम जब ये अभियान आया तो हम लोगों ने एक इसको सबको एक होलिस्टिक प्लान इसको लेकर तैयार किया कि कैसे हम इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर जो हैं वो सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे अमृत सरोवर है वो कुछ विशिष्ट स्थानों पर स्पेसिफिक टोपोग्राफी होनी चाहिए या स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, वहीं बन सकते हैं और रिसोर्स की भी उसके लिए आवश्यकता होती है, तो जहां वो आवश्यक है वहां अमृत सरोवर, अन्य जगहों पर, कुछ जगहों पर हमने जो कंट्रोल ट्रेंचेस होते हैं, जो कंटिन्यूस या स्टगर्ड कंट्रोल ट्रेंचेस होते हैं, वो बहुत सारे हमने लिए, क्योंकि ऐसी भूमियां जो बहुत समय से खेती के लिए उपयोग हो रही हैं उनको मुक्त करा के और वाटर कंजर्वेशन सुनिश्चित करना और दोबारा उसका उपयोग उस प्रकार से ना हो पाए, अतिक्रमण ना हो पाए, ये सुनिश्चित करना एक बड़ा टास्क था हमारे लिए। तो जिले में हम लोगों ने हमारे सभी, मतलब हमारे सीओ साहब और हमारे सभी रेवेन्यू ऑफिसर जितने हैं, तहसीलदार और एसडीएम, उनको एक सूची प्रोवाइड की गई, लगातार 2 महीने बैठक की, मतलब क्योंकि और उनसे ये जानकारी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कितनी भूमि उपलब्ध है और वो किस प्रकार से उसमें उपयोग हो रहा है, और फिर सबके सहयोग से हमने प्रयास किया, लगभग 900 एकड़ भूमि जिले में हम लोगों ने मुक्त कराई और उसमें से लगभग 450 एकड़ पे हमने कंट्रोल ट्रेंचेस निर्माण कराए। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि भविष्य में एक तो वो खेती के लिए दोबारा उपयोग नहीं हो पाएगी, दूसरा अगर हम उसके जल संरक्षण की बात करें तो लगभग 2 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी एक वर्ष में वो संरक्षित कर पाएंगे जो हमारे कंट्रोल ट्रेंचेस हैं। जिस समय ये काम चल रहे थे उसमें नए कार्य जो हमारे उसमें नरेगा इसकी मनरेगा चल रहा था और जीवी राम जी आ चुका था, तो नए कार्य हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसमें जितने भी समाज के अंग होते हैं, चाहे वो पंचायतें हों, सामाजिक संस्थाएं हों, कुछ इंडिविजुअल लोग हैं जो सक्षम लोग हैं, बड़े किसान हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के, उन सब से मीटिंग करके सबसे मतलब ये सहयोग लिया कि जिसके पास चाहे मानव संसाधन हो, चाहे हमारे पास मशीनरी हो या अन्य तरह के रिसोर्सेज हैं जो उपलब्ध करा पाए वो हम उसमें करें। तो उसमें इन सब के सहयोग से आप मतलब हम लगभग 70,000 ट्रेंचेस बनाए हैं जिसमें बिल्कुल भी शासकीय राशि का उपयोग नहीं किया गया। तो और इसके अलावा जैसे हमारे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनवाए, नगर पालिकाओं में हमने स्ट्रक्चर बनवाए, हमने ये प्रयास किया कि समाज के सभी अंग, चाहे वो शासकीय हो, निजी हो, उद्योग हो, स्कूल हो, संस्थाएं हो, सब मिलके अगर जिस भी स्थान पे हैं अगर वो ये देखें कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है और सब अपने अपना प्रयास करेंगे तो हम इसमें कुछ अचीव कर पाएंगे। तो यही लगभग हमने 70,000 संरचनाएं जो जेएसजेबी में बनाई हैं उसमें सभी प्रकार की संरचनाएं हैं और ये सबके मतलब हम कहें एक क्यूमुलेटिव सहयोग से ही हम ये अचीव कर पाए हैं जो भी स्थिति है। इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो हम अगले सीजन में ही मतलब देख पाएंगे। हमने वाटर लेवल्स लिए हैं पंचायतों में कुओं के, बोरवेल्स के लिए अभी कि अभी क्या है और संरचनाओं के बाद क्या स्थिति होती है, लेकिन निश्चित रूप से जितना जल हम, जैसे मैं बताया कि 2 करोड़ घन मीटर हमने ट्रेंचेस में किए, ऐसे ही लगभग 2 लाख घन मीटर हमारा जो तालाब है उनके माध्यम से, तो इस तरह से बहुत मतलब एक हम कहें सफिशियंट नंबर हम कहें जो हमारे जल संरक्षण में हम लोग इस बार प्रयास कर पाए।
0: जी जी गजेंद्र जी, जल संरक्षण संवर्धन और अमृत सरोवर के इस पूरे अभियान के बाद स्थानीय लोगों को, किसानों को इस पूरे अभियान से किस प्रकार लाभ पहुंचा है, क्या बदलाव देखने को मिला है?
2: देखिए निश्चित रूप से मतलब खासकर अगर खेती के कार्यों के लिए देखें तो जल की तो आवश्यकता है, बाकी निस्तारी प्रयोजन के लिए भी और प्रत्येक चरण में जल की उपलब्धता तो बहुत आवश्यक है। जब हमने अमृत सरोवर और फार्म पॉन्ड को निर्मित किया तो सामुदायिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों ने सिंचाई के लिए उनका एक विकल्प के रूप में उपयोग किया और वो जो उनकी क्रॉप निकल के

0: थी, वो उनके लिए निश्चित रूप से एक गिफ्ट थी, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि हमको ये भी देख के काफी अच्छा लगा कि लोगों ने उसको भी कुछ अलग तरीके से देखा, जैसे फॉर्म पॉन्ड में उन्होंने जल की उपलब्धता के साथ मछली पालन किया, कुछ लोग पल्स के लिए भी जा रहे हैं या इस तरीके से। और ये भी मतलब इस तरीके का क्वांटम की अंडरग्राउंड वाटर की तुलना में जो सरफेस वाटर है वो कैसे फसल को ज्यादा बेनिफिट करता है, तो ये अब अल्टीमेटली धीरे धीरे बात इस तरीके से भी जा रही है कि वो लोग जो शुरू में थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहते थे, अब वो उनका और भी रहता है कि हम कैसे बेहतर करें। जैसे हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि खेतों में इस तरीके के रिचार्ज पिट बने जहाँ पे कि खेतों का पानी जब बाहर चला जाता तो उसकी तुलना में वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, इस तरीके के सिस्टम बनाने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो असफल बोर हैं उनमें भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रिचार्ज पिट बनाएं, सो दैट कि पानी अगर वो बोर नहीं दे रहे हैं तो हम उनके माध्यम से पानी भूगर्भीय सतहों में प्रवेश करा सकें।
1: इसमें बस मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि क्या मतलब प्रभाव रहा, तो इसमें हम लोग जब इस अभियान के लिए गांव-गांव जा रहे थे तो कुछ किसानों ने स्वयं अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि उनके जो एक खेत में 6-8 बोरवेल करा चुके हैं, किसी में पानी नहीं निकल रहा है, उसके बाद उनने खेत तालाब 3-4 बनाए और 1-2 सालों के अंदर उनके सभी जो पुराने बोर थे उसमें पानी का लेवल आ गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी लर्निंग है किसानों के लिए कि आप अनलिमिटेड एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं मतलब जो आपका भूगर्भीय जल है उसको, और फाइनली हमको सरफेस वाटर पर निर्भर होना ही पड़ेगा। तो अगर उस पर हम निर्भर रहे सिंचाई के लिए मुख्य रूप से अपने पास, तो हम एक तो भूगर्भीय जल को बचा सकते हैं और दूसरा उसको मतलब उसको रिजुविनेट भी कर सकते हैं, उस सोर्स को वो भी हम कर सकते हैं। तो ये उनके खुद के अनुभव है जो हम लोगों ने उसको प्रयास किया कि उन किसानों को जो अपनी विभिन्न सभाएं हैं सम्मेलन कर रहे हैं जहां भी हम वर्कशॉप कर रहे हैं वहां उनको ही बोलें कि अपने अनुभव शेयर करें जिससे अन्य लोग उससे थोड़ा सा प्रेरित हों और अपने यहाँ उसका उपयोग करें।
2: निश्चित रूप से आपके प्रयासों से स्थानीय लोगों को काफी फायदा हुआ है और जल संरक्षण के प्रति लोग ज्यादा जागरूक और संवेदनशील हुए हैं। श्रोताओं, जल संरक्षण पर बहुत ही अच्छी चर्चा हमारी चल रही है और अब बारी है गजेंद्र सर आपकी पसंद के एक गीत की।
0: जीवन में आपको हर जगह संघर्ष की स्थितियां रहती हैं। मेरी जंग फिल्म का एक गाना है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
3: जी जी, जी।
0: श्रोताओं को अगर सुना सके तो बहुत अच्छा।
2: बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज का हमारा विषय है अमृत सरोवर और जल संरक्षण, जिसकी चर्चा जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में अति रजनी सिंह और श्री गजेंद्र सिंह नागेश जी, आप दोनों ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। गजेंद्र सर, आपने अमृत सरोवर जल संरक्षण और पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का जो पूरा अभियान स्तर पर कार्य किया, हम जानना चाहेंगे कि क्या शुरुआत में जिस रहे थे वो पूर्ण हो गए और भविष्य में इस अभियान को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं?
1: देखिए, जो नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसकी एक रिपोर्ट है। एक तो इंडिया वाइड हमने अंडरग्राउंड वाटर का बहुत व्यापक दोहन किया है। नरसिंहपुर भी उन जिलों में एक है जो अब रेड जोन में है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर को बोर के माध्यम से एग्जॉस्ट करने की वजह से बहुत वाटर टेबल में कहीं ना कहीं नीचे गए हैं। तो एक आम के बारे में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता कि कैसे और कब खत्म होगा, लेकिन ये जरूर है कि एक शुरुआत इसको मानी जा सकती है। और ये अगर सरकारी और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से, स्थानीय सहभागिता के माध्यम से, जो बेसिकली बायर्स हैं सोसाइटी के, उनके साथ अगर हम कर रहे हैं तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि ये सस्टेनेबल हो सकेगा। लेकिन आवश्यकता हमारे निस्तारी प्रयोजनों के साथ साथ अगर खेती की भी है, एक बात होती है कि खेती को हम ज्यादा उपादेय और लाभ के रूप में हम ले जाएंगे, क्योंकि कृषकों के लिए वो एक चुनौती हमारी है। हम कृषक बाहुल्य जिले भी हैं, तो हमें पानी की निरंतरता भी चाहिए और उसकी सततता भी चाहिए। तो हमारे लिए ये काम निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसको मानते हैं कि शुरुआत ही हमने की है। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि नरसिंहपुर जिले को माँ नर्मदा की गिफ्ट मिली हुई है। लगभग 146 किलोमीटर का तट है दोनों क्षेत्रों में मिला के उत्तर दक्षिण में, तो बड़ा क्षेत्र नर्मदा जी के जल से सिंचित होता है और लगभग 24-25 ऐसी नदियां हैं जो कि उसको कहीं ना कहीं से अपनी सहायकता प्रदान करती हैं जलों के रूप में, जो खासकर विंध्य और सतपुड़ा से जो नदियां छोटी छोटी निकलती हैं वो अपना जल भी उनको वापस देती हैं। लेकिन हम अगर हर जगह पे, हर खेत में, हर गांव के लिए अगर कार्य योजना नहीं बनाएंगे तो वो एक मुश्किल होगी। एक हम लोग अपने जिले में नर्मदा समृद्धि परियोजना के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां ली हैं, जिसके अंतर्गत जैसे मैडम ने बताया कि करीब 900 एकड़ से ज्यादा जमीन हमने उसको, जो ट्रेडिशनल धान्य फसलें हैं उससे हटके हम उसको वानिकी और उद्यानिकी के लिए ले जा रहे हैं, और ऐसी जमीनें हमने विधिवत फेंस करके सुरक्षित करें। कम्युनिटी को, विशेष रूप से स्व सहायता समूहों को, उसको अनुबंध के माध्यम से कुछ जमीनें दे के एक निश्चित अवधि के लिए ये प्लानिंग है कि हम उनको दें और ये तय कर सकें कि नर्मदा जी के संरक्षण के लिए भी जल की उपलब्धता सतत बनाए रखने के लिए भी क्या आवश्यक है। तो क्या हम सॉइल इरोजन रोक रहे हैं, क्या हम रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ा पा रहे हैं और वो एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में आ रही है, क्या हम बी कीपिंग जैसे भी चीज कर रहे हैं जो ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को नेचुरलाइज कर पा रहे हैं। तो नर्मदा समृद्धि समितियां हर ऐसे 91 गाँव में होती हैं और अपेक्षा समिति के माध्यम से स्थानीय पंचायत के लोग और स्थानीय समुदाय को जोड़ने से है कि हम ये तय करें कि क्या नहीं करना है। मसलन जैसे कि जो नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज है वो बहुत बड़ी चुनौती है, अजैविक कचरा, खासकर अगर देहातों की बात करें, क्योंकि शहर में की तुलना में वहां कहीं प्रसंस्करण नहीं है, बहुत ज्यादा कलेक्शन का भी एक वातावरण निर्माण की आवश्यकता है। तो वो जितना भी अजैविक कचरा, वो चाहे पनी प्लास्टिक के रूप में, डिस्पोजल के रूप में होता है, वो नदियों के माध्यम से प्रदूषण का कारण बनता है। तो हम उनके भी रोकथाम की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक पत्तलों की बात कर रहे हैं, बर्तन बैंक की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये बात, और क्या करें हम हरी चादर बिछाएं, रैपिडेंट जोन को हम ज्यादा मजबूत करें, वानिकी और उद्यानिकी पौधे और उसी के माध्यम से आजीविका सृजन की भी गतिविधि हो। ऐसा नहीं हो कि हम जब इकोसिस्टम बैलेंस कर रहे हैं तो किसी उपार्जन हो, महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही एक जिले में सिंगरी नदी है जो नरसिंहपुर की लाइफ लाइन है, उसके भी पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है और उसमें न केवल जन सहयोग, जैसे कि मैडम ने बताया कि उसमें लगभग 2 माह तक जिले के विभिन्न विभागों की जेसीबी और 200 जैसी बड़ी मशीनें लगभग नदी को उसके कोर्स करेक्शन के लिए मदद करती रहीं, बेंच बनाने का काम किया, फिर बाद में

0: माननीय मंत्री जी ने उसमें हमको लगभग कुछ प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है करीब 4 करोड़ रुपए का, जिसमें कि हम शहर से पहले के 4 गांवों में नदी पुनर्जीवन के काम के साथ साथ रिवर फ्रंट भी डेवलप कर रहे हैं और समाज को एक अच्छी गतिविधि के रूप में उसको देने का काम कर रहे हैं।
1: जी, अगर देखा जाए तो एक पूरे पारिस्थितिकी को, एक पूरे इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। रजनी मैम, प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में और जल संरक्षण को लेकर के नरसिंहपुर जिले की सराहना की गई, तो आप नरसिंहपुर जिले की कलेक्टर हैं, 2013 बैच की युवा आईएएस अधिकारी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप?
2: देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जिले का नाम मन की बात में लिया गया तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जिले के लिए एक राष्ट्र स्तर पर जिले का नाम आना निश्चित रूप से, और आपके काम को इतना बड़ा एक रिकग्निशन मिलना अपने आप में हम सब के लिए बहुत उत्साह और गर्व का विषय रहा है और प्रेरणा मिली है। जो आपने अभी लक्ष्य की बात भी की थी कि जो हम अभी हमने काम किया है वो बस एक प्रारंभ है, जैसे सीओ साहब ने बताया, तो हमें बहुत प्रेरणा मिली है कि हम अपने इस काम को और आगे बढ़ाएं। और बरसात के बाद, जैसा अभी पहले भी जिक्र में आया कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी भूमियाँ हैं जहाँ हम लोग निखाली कराई है हमने, तो वहाँ पे हम लोग अभी तो हमने छोटे संरचनाएं बनाई हैं। हमारा प्लान है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका एक मुख्य विषय रहता है अमृत सरोवर को लेके, तो हम लोग इन क्षेत्रों में भूमियों में बड़े बड़े सरोवरों का निर्माण कराएं। और विशेष रूप से अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बड़े तालाब होते हैं तो बहुत, एक तो आप जो हम कहते हैं कि एक आपका जल स्तर है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है, और बेसिक जो आपका सरफेस वाटर है अगर वो हमने रोक लिया तो वो उस क्षेत्र की जो रूटीन की आवश्यकताएं हैं, चाहे जानवरों के लिए पेयजल की बात करें या सिंचाई की बात करें या फिशरीज की बात करें, तो जो कृषि को लाभ का धंधा बनाने वाला वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही प्रिय प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी सहयोग मिलता है। तो हम लोग प्लान यही है कि हम जो ग्रामीण एक अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से सभी चीजें समन्वित करके उसको बढ़ाने का प्रयास कर पाए। निश्चित रूप से हम लोग अपना जो हमारा अभी बारिश के बाद का समय होगा उसके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम कैसे इन सभी भूमियों पे कुछ बड़े तालाब और निर्मित कर पाएं। और प्लांटेशन बेसिकली एक सेकेंड लेवल है।